0: salt. It's the most popular seasoning in the world. And India, one of its biggest producers. It's an industry built on the labor of the Agarwals, who work in extreme conditions in the country's salt deserts.
1: आप देखते हो तो अंदर से रोना आता है. से आदमी इतने हमारे देश के लिए इतना करता है.
0: Workers believe the government ignores their pleas for help, while traders keep most of the profits. But the salt industry's leading figures say ensuring the community's welfare is not their responsibility.
2: हमारा तो business है, लेकिन इनकी तो जिम्मेदारी है सरकार की. वो पल्लू झाड़ रहे हैं, उनको पूछो.
0: 101 East investigates the hardships faced by the workers who supply the salt from India's deserts that ends up on our dinner tables. In India's western state of Gujarat, a vast salt flat desert stretches across almost 5,000 square kilometers. It's estimated that 30% of India's inland salt is harvested here by a community of salt workers known as the Agarwals. The term comes from the Gujarati word agar, meaning salt.
3: Rudra, gutlena.
0: Kishan Bhai Maharaj is getting ready for another round of backbreaking work. He lives in the desert with his wife and two kids for 8 months every year when the seawater recedes after the monsoon. His 13-year-old son Rudra often helps him.
4: एकदम फिट हो जाएगा उसको हम छूटा पाड़ रहे हैं हर रोज ऐसा करना पड़ता है हर रोज दंतारा खींचना पड़ता है
0: किशन्स फैमिली हैव टॉयल्ड हियर फॉर सेंचुरीज ही जॉइन द ट्रेड व्हेन ही वाज जस्ट 8 years old
4: हम 8-10 पीढ़ी से ये अगरिया परिवार है और हमारी जो अगरिया की जिंदगी है वो ऐसी है बदतर है कि पूरा का पूरा दिन रात लकड़ा कादेव कीचड़ में हाथ जटा के रहना पड़ता है अगर रात को सो गए तो भी हमें नींद नहीं आती है क्योंकि हमारा पाटा में पानी भरा हुआ होता है और वो कच्ची मिट्टी से बना होता है कब किस टाइम पे पवन आ जाता है और कब टूट जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है
0: एट द एंड ऑफ अ गुड सीजन किशन कैन होप टू मेक बिटवीन $350 to $500 फॉर हिज लेबर ही होप्स हिज सन विल हैव अ बेटर फ्यूचर
4: हमारी जिंदगी तो इसमें गई लेकिन उसको पढ़ा लिखा के कुछ बनाना है मेहनत मजदूरी कुछ भी करके
0: फॉर ऑल द हार्डशिप्स रुद्रा सीज हिज फादर्स सैक्रिफाइसेस डिफरेंटली
5: पापा की मदद करता हूँ इसलिए अच्छा लगता है मेरे पापा भी मुझ पर गर्व है उन्होंने पढ़ा नहीं है फिर भी इतनी

0: मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन कलम से होता है, और ये मेहनत नहीं है, ये मजदूरी है।
1: पगला ना एमना तरफ बढ़िया।
2: The next morning, Rudra gets ready for school. It's only a short walk away from the family's hut.
0: Bye.
2: This desert was declared a wildlife sanctuary in the 1970s to protect the endangered Indian wild ass. That makes it difficult to build permanent infrastructure here. So, the Gujarat government has set up about 2 dozen bus schools for Agariya children.
3: ધોરણ 6 થી 8 નું હિન્દી નું પેપર છે. પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખીશું.
2: But advocacy groups have repeatedly warned the schools suffer from teacher shortages.
1: वहां अलग-अलग साहब होते हैं जो 1 से 8 तोरों को बनाते हैं और वहां अच्छे से समझाया जाता है और दर एक विषय में और यहां घड़िए और ऐसा आते विषय पे नहीं आते.
2: There are no desert schools for older children.
3: महसूस होता है कि ये इस इन बच्चों में भी कुछ आईक्यू पावर अच्छा होता है कुछ बच्चों में, लेकिन उनको पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पास.
2: Far from the bus schools and salt fields, some traders have built large fortunes from the salt harvested by the Agariyas.
4: पाटिया हार साफ करता नहीं हो जो पाटिया हमारे एकदम चोखा छाओ जी एक तो उड़न है असल.
5: और ये सब बैग कहाँ जा रहे हैं सर?
6: ये यूपी में एमपी में.
5: ये सब आपका है?
6: सब यहाँ से ये दीवार से वहाँ लास्ट तक मेरा है. करीब 10,000 चौरस मीटर की जगह है.
2: Hingor Bhai is one of the biggest traders in the area. He pays advances to as many as 100 families each season. For him, the storm hasn't been entirely bad for business.
6: नमक का प्रोडक्शन कम होता है तो डिमांड ज्यादा रहती है, तो आज के समय में डिमांड अच्छी है. पूरा एरिया ढेर बन जाएगा. करीब 17-18 लाख टन नमक यहाँ बनता है.
2: Last year, Hingor Bhai and other traders opened a processing plant to meet rising demand for packaged salt. Today, he's inspecting the production line with his factory manager.
7: ये इस तरीके से अपना 1-1 किलो पैकिंग होता है. इन 13 मशीनों में पर मिनट 60 पाउच की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम.
2: Most Agariyas never sell directly to the companies whose brands appear on supermarket shelves. Instead, their salt typically passes through middlemen.
7: अभी तो अपने पास मान लो एक ब्रांड है, कभी 10 ब्रांड हो तो सबके इसके भी आपके भी दोनों मिलेगा.
2: Workers say they are often paid less than 0.5 cent for each kilogram of salt they harvest by hand. Once packaged, the same salt can sell for up to 35 cents a kilogram. But when asked whether rising profits mean traders should pay Agariyas more, Hingor Bhai says the responsibility lies elsewhere.
6: जो अगरिया कल्याणकारी योजना का फंड है वो सही ढंग से सरकारी मैनेज नहीं करती. यदि सरकार मैनेज करती तो उनको शिक्षण का, आरोग्य का, उनके बच्चे के जो भी सुविधा है वो ज्यादा दे सकते.
2: Back in the desert, families like Kishan's are still waiting for help.
8: चलो हवे आपणे दाबे जईए. बरोबर अहीं मीटिंग राखेली है.
9: सबसे मुश्किल जिंदगी आगरिया की है यहाँ गुजरात के अंदर, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं. यही कुछ पता नहीं चलता. हर बार ऐसा, हर साल ऐसा होता है, लेकिन आज तक सरकार कुछ करती नहीं है. अब इस बार भी मीटिंग है. अब मीटिंग में हम जा रहे हैं. अब देखते हैं कि इस बार सरकार कुछ करती है या नहीं करती.
10: आगरिया भयो केवा मनात करता मजूरी अने रण वचारे गुजारो करता ए आवो मेघ रे ए राजा नो थयो टांडो अरे रे कैक तो नो से अमारा यासु.
2: The meeting has been organized by a group advocating for Agariya rights. Harinesh Pandya and his team have traveled from Ahmedabad, Gujarat's largest city.
11: अगर दूसरे कोई traditional occupation में ऐसा disaster आता तो इस हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर 15-20 लोगों ने suicide कर लिया होता. लेकिन इनका जो जिगर है, ये ये मुसीबतों को झेलने की जो ताकत इनकी है कम्युनिटी की, अगरिया कम्युनिटी की, पूरे रण के अंदर देखें तो करीब करीब 80 करोड़ के आसपास
12: ह्यूज लॉस
11: है। और अगर ठीक से पूरा, अगर हमें लगता है, हमारा हम जो देखते हैं तो लगता है कि 100-120 करोड़ के आसपास नुकसान।
2: The group is calling for a disaster relief policy similar to the compensation schemes available to Indian farmers affected by extreme weather.
11: एक बात चोखी स्पष्ट करी कि रेवेन्यू विभाग और गुजरात नो जे आ डिजास्टर मिटिगेशन नो जे विभाग छे होनारत सामे राहत करवानो हजी एकाद वर्ष मा जशे आखी प्रक्रिया मा।
2: Few senior officials have come to the meeting. None are from the departments responsible for disaster relief.
13: તમારા મહેનતથી મિત્રો તૈયાર થાય છે, તમે જે મહેનત કરો છો બરોબર એમાં અમે સહભાગી થઈએ.
2: એન્ડ ધોઝ હુ આર હિયર ઓફર નો કોન્ક્રીટ હેલ્પ.
14: તમે જે મજૂરી કરો ને એ તમારા બાળક ના કરે, એટલા માટે હવે તો મજૂરી કરીએ તો અમે એજ્યુકેશન જોશે.
2: કિશન ઓન્લી ગેટ્સ ધ ચાન્સ ટુ સ્પીક અવર્સ લેટર. બાય ધેન સેવરલ ઓફિશિયલ્સ હેવ ઓલરેડી લેફ્ટ.
0: જે મારું એકનું જ નહીં પણ આખા રણની અંદર તમામ આગોરિયાના ઘર પરિવાર બધું જ રણપણ થઈ ગયું. છાપરા ઉડી ગયા, ટાંકીઓ ફૂટી ગઈ, ક્રૂડના બેલર ઉડી ગયા, સોલર પ્લાન્ટ તૂટી ગયો. મારા મીઠા વારેલા પણ નથી, મીઠા પાટાની અંદર જ છે.
2: ધ સ્કેલ ઓફ ધેર લોસીસ ઇઝ ક્લિયર.
10: પણ સરકારને કોઈ જઈ કે જો અમારી વેદના, અરે રે કઈક તો
2: Multiple government authorities refused our requests for an interview. A junior official did not say if the salt workers would receive support. So we're heading to Ahmedabad to meet the president of India's Salt Manufacturers Association. Bharat Rawal represents some of the country's biggest salt producers. Despite growing concerns over erratic weather, he says the industry's overall outlook remains strong.
15: During 2024-25, we achieved 49 million ton of production, which is more than US salt production.
2: Rawal dismisses the idea that the salt industry itself should do more to help workers.
15: हमारा तो business है और CSR activity हमारा है ये development का, अगरिया का ख्याल रखना, जैसे गमबूट देना, goggles देना.
16: फिर भी कोई पहने हुए बहुत कम
15: आता है. वो एक myth है कि अगर मैं जूते पहनूंगा तो मेरी स्पीड कम आएगी, लेकिन इनकी तो जिम्मेदारी है सरकार की. वो पल्लू झाड़ रहे हैं, उनको पूछो.
2: Rawal is also a member of Gujarat's Salt Empowered Committee, a government body responsible for agaria welfare, among other issues. He believes the government has neglected workers.
15: Khali funding se nahi hota hai na, 40 crore de diya lekin ek bhi meeting nahi bulao to kaisa paisa kharch hoga. Aur agar seedhe shabdon mein bola jaye, aaj ke din mein jo mai baap bolte hai na sarkar mein, is industry ka mai baap hi nahi raha koi.
2: Government records reviewed by 101 East show the committee has only met twice since 2020. The government's own auditors recommended regular reviews to ensure welfare schemes actually reach agaria families. Back in the desert, Kishan's season has finally come to an end.
8: हम लोग इसको पूरा सामान जो है यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ होता है. वो पानी इतना के 5-6 फुट पानी होता है.
2: For Kishan's family, returning to the village means clean water and electricity.
8: रुद्रा, नीचे एक एक वस्तु मुक्तो रहे, गमे ती एक वस्तु नीचे आई मुक्तो रहे. अब अजूरी नहीं, एक मत भरा वाला बस.
2: But Kishan must stay behind a little longer. He still has salt to load and must speak with his trader to see if a season's worth of work will earn him anything at all.
17: હવે મારું મીઠું તો ગયું બરોબર, પણ આમ કેવું લાગે તમને કે
18: હવે હિસાબ ફાયદા ખબર પડે ને?
17: હા, એટલે આમ તો આમ ચેલુક માથે રહેવું. ગઈ સાલનું તો હવે શું ખબર પડે, જેટલું મીઠું થાય ગઈ સાલ કરતાં મીઠું ઓછું થાય, ગઈ સાલ